0: लोगों की प्रतिक्रिया कैसे होती थी, क्योंकि तमाशा का हमारे मन में जो चित्र होता है उससे ये थोड़ा सा हटके है, तो लोगों ने इसे कैसे लिया?
1: तमाशा लोगों की जान था, जब सिनेमा नहीं था, जब नाटक नहीं था, जब मोबाइल नहीं था, जब टीवी नहीं था, जब तमाशा ही तमाशा था, तो लोग जब नाटक नहीं था, जब मोबाइल नहीं था, जब टीवी नहीं था, जब तमाशा ही तमाशा था, तो लोग

0: जब नाटक नहीं था, जब मोबाइल नहीं था, जब टीवी नहीं था, जब तमाशा ही तमाशा था तो लोग जब नाटक नहीं था जब मोबाइल नहीं था जब टीवी नहीं था जब तमाशा ही तमाशा था तो लोग ये तमाशे में आएगा, आधुनिक गाना आएगा, ये सब जो अभी चल रहा है ये तमाशे में अभी आ चुका है। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक हो चुके है, पहले इंस्ट्रूमेंट हाथ से बजाते थे, अब इंस्ट्रूमेंट बटन से बजाए जाते हैं, ऐसा सब बदलाव आ चुका है और आगे भी ऐसा बदलाव आएगा।
1: रघुवीर जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि तमाशा कलाकार को पहली बार पद्मश्री से सम्मानित किया जाने वाला है, तो इस पहल से कौन कौन से सकारात्मक बदलाव तमाशा के क्षेत्र में आपको लगता है कि हो सकते हैं?
0: जब से ये पुकार हुई है 25 जनवरी को, ये रघुवीर खेड़कर को पद्मश्री मिला है, जब से तमाशे में जो लोग आते हैं और बहुत शांति से तमाशा सुन रहे हैं, मेरा तमाशा तो दो रोज लोग आते हैं तो बहुत शांति से सुन रहे हैं, बहुत शांति से देख रहे हैं, तालियां सिट्टियां बजाते हैं, जाते टाइम हाथ वारे करते है, टाटा बाय बाय करते है, हमारी वीडियो निकालते है, हमारे साथ फोटो निकालते है, हमको धन्यवाद करते है, ये सब बदलाव आ चुका है 25 जनवरी के बाद।
1: रघुवीर जी, आपकी इस लंबी यात्रा को जब आप अब इस मकाम से पीछे मुड़ के देखते हैं, जो जिंदगी आपने जी, जो सोंगाड़िया के इतने सारे पात्र आपने निभाए इतने सारे वगनाट्यों में, तो क्या लगता है कैसी रही है ये जर्नी अब तक?
0: बहुत बेहतरीन रही है
1: रघुवीर जी। तमाशा कलाकारों को देखने का एक नजरिया थोड़ा सा अलग होता है।
0: आज अपन फिल्म देखते हैं, अपन रील देखते हैं, तो बच्चों के आंग पे पूरा बदन झका हुआ नहीं होता है, फिर भी उनको लोग अभिनेत्री बोलते हैं। और ये जो तमाचे की नर्तिका रहती है ये नौवारी साड़ी में पूरी ढके रहती है, पूरी सजी रहती है, उसको लोग तमाशे वाली बोलते हैं। ये समाज है, अभी वो समाज जैसा चलेगा उसके पीछे जाना पड़ेगा।
1: तो इस फ्रंट पे भी आप कुछ बदलाव देख रहे हैं रघुवीर जी, कि अगर कुछ नजरिया बदल रहा है लोगों का या वो वही है?
0: नहीं नहीं बदला है, एक महीने में पूरा नजरिया बदला है। मैंने हमारे सारे लोग जो है हमारे साथी तमाशे वाले उनको भी पूछा, मैं अपना ये पुरस्कार जाहिर होने के बाद तुम्हारे में क्या बदलाव आया, तुम्हारा प्रेक्षक क्या कर रहा है, तो बोल रहे बहुत अच्छे तमाशा देख रहे हैं, पहले सर के धींगाना भिंगाना बहुत करते नहीं, और भीड़ होती थी वो भीड़ में मारामारी होती थी और कुछ होता था वैसा कुछ करते नहीं, अभी बहुत अच्छा तमाशा देख रहे हैं, इतना बदलाव तो जरूर आया है ये पद्मश्री से।
1: रघुवीर जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है जो आपके क्षेत्र में आना चाहती है या आप ही के क्षेत्र से उनके माँ बाप है और जो बच्चे हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं, ये भी कभी कभी होता है, तो
0: होता है।
1: इस क्षेत्र में आना जो चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: जरूर आइए, क्योंकि ये अभी इसमें पद्मश्री मिल रहा है, अगर वो यहाँ आके करियर करे तो कुछ हो सकता है। अभी तमाशा कुछ ग्रामीण रहा नहीं, तमाशा भी बदल चुका है, पूरा तमाशा बदला हुआ है, तमाशे में रोजगार भी अच्छे मिलते हैं, पैसा रोजगार तमाशे में मिल रहा है और कला मिल रही है, सबसे ज्यादा तो कला मिल रही है। कला एक ऐसी चीज है मरे हुए आदमी को जिंदा रखती है, ऐसी कला है, कला के साथ अपनी उपजीविका भी वो याद कर सकते है और अपना नाम भी बहुत कर सकते हैं। यही मैं आने वाली नई जनरेशन को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जरूर तमाशे में भाग ले, इसका सुने ना, आप जरूर तमाशे में भाग ले, आप बड़े कलाकार हो जाए, बड़े बड़े पुरस्कारों के माननीय बन जाए, ऐसा मुझे लगता है।
1: रघुवीर जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी महाराष्ट्र में मनोरंजन की पारंपरिक विधा तमाशा के लिए अपना योगदान देने वाले श्री रघुवीर खेड़कर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अंकिता आप्टे। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: People's Padma on Akashvani.

0: ଆକାଶବାଣୀ ରାଉରକେଲା ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार समय सीमा से पहले दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुच्छेद साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस भी हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत

0: कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच दल में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह में पहली स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है और कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इकाई ने नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चेनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। पहले एक दिन के लिए निर्धारित ये चुनाव अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की पैरा शॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 5वें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोता बंधु आपण मैंने कार्यक्रम शुणुंट एफएम बैंड्रे 102.6 MHz जोगे श्रोता बंधु शुणा भक्ति गीतर कार्यक्रम बंदन कतोटी भक्तिभरा भजन भजन टी शुणा कृष्ण बल्लभी रथ रचनार तृप्ति दास कंठरे

भरत को श्री राम की चरण पादुका प्राप्त हो चुकी है। सबके चित्रकूट से विदा होने की वेला आ पहुंची है। स्वामी के चरणों की वंदना करके भरत और शत्रुघ्न ने लक्ष्मण को गले लगाया, सीता जी के चरणों की धूलि ली। लक्ष्मण सहित श्री राम ने राजा जनक के सम्मुख सिर नवाकर उनके वहां आने के लिए कृतज्ञता तथा वन प्रवास के कष्टों के लिए क्षमा याचना की। फिर दोनों भाइयों ने सासु रानी सुनैना के पास जाकर उनका आशीष प्राप्त किया। मुनि विश्वामित्र सहित सभी पूजनीय ऋषि मुनियों, कुटुंबियों, अयोध्या वासियों, मंत्रियों आदि को यथा योग्य विनय प्रणाम करके विदा करने के बाद श्री राम माता कैकेयी के निकट आए। निश्चल हृदय से मिल भेंट कर माता कैकेयी का संकोच मिटाया और सुंदर सजी पालकी में बिठाकर उन्हें विदा दी।

उधर सीता जी ने मायके से आए कुटुंबियों, माता पिता और सासुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी माताओं को सुंदर सजी पालकियों में बिठाकर विदा किया गया। जब सब लोग विदा होकर चले तो लगा बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु तथा सभी कुटुंबी मन मारे थके हारे चले जा रहे हैं। पर्णकुटी लौटकर श्री राम और लक्ष्मण का मन अवसाद से भर गया। जड़ चेतन, चर अचर सभी उदास हो गए।

0: एकः वरिष्ठारक्षक अधीक्षकः एकक्ष अपर आरक्षकाधीक्षकः अपि भविष्यन्ति। उच्चतम न्यायालयेन राज्य प्रशासनं निर्देशितं यत् विशेषान्वेषण दले पंचम सदस्य रूपेण न्यायिक लेखा परीक्षकः अपि नियोज्यताम्। एतद्दलं द्विसाप्ताहाभ्यन्तरे स्व प्रथम स्थिति प्रतिवेदनं न्यायालये समर्पयिष्यति। न्यायपीठं राममन्दिरदानराशेः कथित दुरुपयोगस्य तथा न्यासस्य वित्तीय लेखानां केन्द्रीयान्वेषण विभागेन अन्वेषणार्थं प्रस्तुताः याचनाः शृणोति स्म। एतन्मध्ये उत्तरप्रदेशस्य विशेष न्यायालयेन कथित राममन्दिर दान चौर्य प्रकरणे सर्वेषाम् अष्टाभियुक्तानां न्यायिकाभिरक्षायाः अवधिः 14 दिनानि यावत् वर्धितः। भारतीय भारोत्तोलिका ज्ञानेश्वरी यादवः ह्यः ग्लास्गो नगरे आयोजितेषु राष्ट्रमण्डल क्रीडासु महिलानां 53 किलोग्राम भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवती। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च ज्ञानेश्वरी यादवं रजत पदक प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दितवन्तः। अधुना भारतस्य पदक तालिकायां एकं स्वर्ण पदकं, त्रीणि रजत पदकानि, एकं कांस्य पदकं च एवं आहत्य 5 पदकानि सन्ति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी राउरकेला श्रोताबंधु आपण मैंने कार्यक्रम सुनिछंति एफएम बेंड्रे 102.6 मेगाहर्ट्ज चोके आकाशवाणी सदा सर्वदा आपणक मनोरंजन पई। श्रोताबंधु बर्तमान शुणा चलित अधिवेशन में प्रसारित होगा कार्यक्रम संपर्क में कतोटी सूचना टिके परिपरि शुणिपर आंचलिक संवाद आकाशवाणी कटक केन्द्र 7:05 7:10 शुणे आमर स्वास्थ्य 7:15 शुणे ओडियारे संवाद आकाशवाणी कटक केन्द्र 7:25 शुणिपर कार्यक्रम खेल जगत समाचार प्रभातरे हिंदी रे संवाद शुणे 8:00 और 8:15 शुणे मॉर्निंग न्यूज रे इंग्राजी रे संवाद आकाशवाणी दिल्ली रो सुगम संगीत शुणिपर 8:30 आज एणबु शिशिर दास और श्रीकांत दास कंठरे केतोटी लघु संगीत 8:45 शुणे बणपहाड़ गीत क्रम सांताली गीत परेषण करसा हास्द और साथी 10:00 शुणे हिंदी चलचित्र गीतर कार्यक्रम सिने संगीत कतोटी चलचित्र गीत एवं दिन 12:00 शुणे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग 1337 अध्याय एवं सबुदिन पर 9:00 अपराह 5 मध्य शुणिपर आपण प्रिय विविध भारती कार्यक्रम श्रोताबंधु एथिला चलित अधिवेशन में प्रसारित होगा कार्यक्रम संपर्क में कतोटी सूचना आकाशवाणी राउरकेला बर्तमान शुणा आंचलिक संवाद एवं परिपरे आमर स्वास्थ्य एवं ओडियारे संवाद आकाशवाणी कटक केन्द्र कि समय मध्यरे

0: क्षय किंबा ठिकणारे कोणसी परिवर्तन नाही तेबे निजो बैंक किंबा एटीएम किंबा बिजनेस करेस्पोंडेंट माने बिसिंग को पाखकु जानतु किंबा बैंक रे पंजीकृत ईमेल किंबा मोबाइल नंबर किंबा मोबाइल बैंकिंग ऐप किंबा चिट्ठी माध्यम रे यहार सो घोषणा दियंतु।
1: अच्छा आउ जदी कोणसी परिवर्तन थाए तो
0: से क्षेत्र रे परिचय एवं ठिकणार सर्वशेष प्रमाण दे केवाईसी अपडेट करै परिबे।
1: बस बुझी गली
0: निजर केवाईसी अपडेट करबा पई निजर निकटस्थ ग्राम पंचायत रो कैंप किंबा बैंक शाखा को जानतु।
2: आरबीआई कहे
0: सचेतन होवंतु सतर्क रहंतु।
3: ओडिसा सरकार को समवाय विभाग तरफ राज्यर समस्त कृषक भाई भौनी मानको सूचित करा जाउछि जे चलित 2026 मसिया खरीफ ऋतु पई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे निज फसल धान मका कपा अदा मांडिया चीनाबादाम हलदी और हरड़ चाषर बीमा पंजीकरण कराइनियंतु। भाग चाषी ऋणी और अणऋणी चाषी समस्त निज फसल बीमा पंजीकरण निर्धारित तारीख 31 जुलाई सुधा निकटस्थ कृषि समवाय समिति जथा पैक्स लैंप्स बैंक शाखा किंबा जनसेवा केन्द्र रे कराई परिबे। चाषी पिछा 5 एकर जमीर फसल बीमा पंजीकरण संपूर्ण देयमुक्त अटे। प्लॉट पिछा केवल 1 टंका देवाक पड़ अधिक बरणी पर निकटस्थ कृषि समवाय समिति जेकोसी बैंक शाखा किंबा कृषि और समवाय अधिकारी को जोगाजोग करंतु।
4: सचेतनता और सतर्कता ही सुरक्षा वज्रपात प्रति सावधानता यथा घड़घड़ी शब्द शुणिले खोला स्थान यथाशीघ्र कौनसी पक्का घर भीतर को चली आसतु गच्छ तले बुदा निकट आश्रय नियंतु ना खोला पड़िया क्षेत्र में रुहतु ना निरापद आश्रयस्थल ठारु दूर थिले खालुआ जगह देखि जाकी जुकी बसी जातु मुंड देहरु धातु तैयारी जिनस अलग कर दिंतु बिजुली मारुवा समय जदि आप कार बस अन्य मोटा चादर थिबा जान भितरे अछंती ताले पदा को बाहरंतु नाही साइकिल बा मोटर बाइक चलांतु नाही लुहा खंब विद्युत तार इत्यादि ठारु दूर रे रोहंतु पोखरी बा जलाशय निकट रे रोहंतु नाही जदि आपण पानी भितरे किंबा डंगा भितरे अछंती ताले यथा शीघ्र बाहरी आसंतु। घड़घड़ी मारथुबा समय रे गुड़ी उड़ांतु नाही हाथ रे माछ दरा बनिसी लुहा बेंट छता बा लुहा छड़ धरंतु नाही घर भितरे थिबा बेले झरका कबाट एवं कांथ ठारु छाड़ी रुहंतु विद्युत प्रवाहित वस्तु ठारु दूर रे रुहंतु सचेतनता और सतर्कता ही सुरक्षा।
5: आकाशवाणी राउरकेला श्रोता बंधु आपण माने कार्यक्रम सुनुछंते एफएम बैंड रे 102.6 मेगाहर्ट्ज जोगे आकाशवाणी सदा सर्वदा आपणक मनोरंजन पई श्रोता बंधु आपणक व्यवसाय रे उन्नति आणिबा पई आकाशवाणी रो सहयोग नियंतु। आकाशवाणी राउरकेला केन्द्र रे विज्ञापन बुकिंग पई आज ही जोगाजोग करंतु 7008248758 रे उपभोक्ताङ्क पाखरे पहुँचिबा पई सबुठु सुलभ एवं सहज माध्यम हेउछि आकाशवाणी। आकाशवाणी राउरकेला केन्द्रे विज्ञापन बुकिंग पई डायल करंतु 8249809672 रे। आपण माने कार्यक्रम सुनुछन्ते 102.6 मेगाहर्ट्ज जोगे आकाशवाणी राउरकेला केन्द्र को
4: सचेतनता और सतर्कता ही सुरक्षा वज्रपात प्रति सावधानता यथा घड़घड़ी शब्द शुणिले खोला स्थान यथाशीघ्र कौनसी पक्का घर भीतर को चली आसतु गच्छ तले बुदा निकट आश्रय नियंतु ना खोला पड़िया क्षेत्र में रुहतु ना निरापद आश्रयस्थल ठारु दूर थिले खालुआ जगह देखि जाकी जुकी बसी जातु मुंड देहरु धातु तैयारी जिनस अलग कर दिंतु बिजुली मारुवा समय जदि आप कार बस अन्य मोटा चादर थिबा जान भितरे अछंती ताले पदा को बाहरंतु नाही साइकिल बा मोटर बाइक चलांतु नाही लुहा खंब विद्युत तार इत्यादि ठारु दूर रे रोहंतु पोखरी बा जलाशय निकट रे रोहंतु नाही जदि आपण पानी भितरे किंबा डंगा भितरे अछंती ताले यथाशीघ्र बाहरी आसंतु घड़घड़ी मारथुबा समय रे गुड़ी उड़ांतु नाही हाथ रे माछ दरा बनिसी लुहा बेंट छता बा लुहा छड़ धरंतु नाही घर भितरे थिबा बेले झरका कबाट एवं कांथ ठारु छाड़ी रुहंतु विद्युत प्रवाहित वस्तु ठारु दूर रे रुहंतु सचेतनता और सतर्कता ही सुरक्षा।
6: प्रतिटी खुशीर मीठा साथी डिवाइन डिलाइट्स।

0: ताजा होममेड और कस्टमाइज्ड केक ऑर्डर पे फोन करों तो 8763257620 रे डिवाइन डिलाइट्स प्रत्येक बाइट रे खुशी झलसे।
1: आकाशवाणी राउरकेला श्रोता बंधु आपण माने कार्यक्रम सुनुछंते एफएम बेंट्रे 102.6 मेगाहर्ट्ज जोगे। श्रोता बंधु वर्तमान सुनिबा समाचार प्रभात रे हिंदी रे संवाद एवं परे परे मॉर्निंग न्यूज रे इंग्रजी रे संवाद सुनि परिबे आकाशवाणी दिल्ली रो।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉर्ट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम 1 की सफलता की सराहना की थी।
5: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
4: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
6: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26

0: जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन मामलों में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान, सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और

0: निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्ले बुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे अब 8 से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
2: हम बहुत खुश है, हमारे देश के लिए मेडल लाके हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाऊंगे।
0: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी, सरकार ने कहा समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने

0: से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा। प्रत्यक्षित चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi hails India's growing private space ecosystem, meets Skyroot Aerospace founders after Vikram 1 success. Bihar and Assam governments to withdraw cases against NEET protesters and release those arrested under various charges. NDA parliamentary party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi today. Tourism Ministry signs MOU with Air India to promote India as preferred global tourism destination under Incredible India brand. India and China reaffirm importance of maintaining peace and tranquility along border. And India's para-athlete Sharmila Dhankar wins gold medal in women's shot put event at the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi interacted with Pavan Chandna and Naga Bharat Dhaka of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in the discussion, along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about the journey and insights into the future plans. He said the energy, ambition and positivity reflect the vibrant spirit of India's private space ecosystem. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot Aerospace team. In his Mann Ki Baat program also, Prime Minister praised the success of Vikram 1.
3: पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
2: बिहार एंड असम गवर्नमेंट्स हैव डिसाइडेड टू विथड्रॉ केसेस एंड अदर लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट ओवर नीट एग्जामिनेशन। Bihar's Home Department assured that it will immediately initiate the legal process to withdraw all FIRs, criminal complaints and show cause notices against agitators registered before 6 p.m. on the 26th of July. We have more from a correspondent.
4: According to a public notice issued by the Home Department, no punitive, retaliatory or adverse legal action will be taken against any person who participated in the protest held anywhere in the state to 6 p.m. on 26 July. The legal process to withdraw all first information reports, complaints and show cause notices registered during this period will be initiated immediately. The government has also announced that all persons arrested or detained in connection with these cases will be released at the earliest. It has further clarified that no direct or indirect action will be taken against the individuals named in these cases in future. Savita Parikh, Akashvani Samachar, Patna.
2: Assam government has decided to withdraw all criminal cases registered in connection with NEET protests. Authorities have also been instructed to review all arrests and detentions made in connection with these cases and expedite the release of the arrested persons.

जीवन की सबसे बड़ी सफलता केवल अपने लिए जीने में नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में उम्मीद और मुस्कान जगाने में है।